0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

कोट डीजी भरसां कुंभ थाण जी हद मिसरी शाह स्टाफ वटि पुर दौरान मुज़ामत ते नौजवान क़तल। हथियार बंद पुर मुज़ामत दौरान नौजवान गुलाम मुस्तफ़ा बुगटी खे क़तल करण बाद फरार थी विया। वाके ख़िलाफ़ मक़तूल जे वासनि जो पुराणे नेशनल हाईवे मिसरी शाह स्टाप ते धरणो। रोड ब्लॉक ॿिन्ही पासनि खां ट्रैफिक मुअतल थी वई। अमरीकी परदेह वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ प्रोजेक्ट फ्रीडम खे रोकण जो सबबु पाकिस्तान जी दरख़्वास्त हुई। पाकिस्ताननि चयो त जेकॾहिं तव्हां प्रोजेक्ट फ्रीडम खे रोकियो त असां समझूं था त असां हिकु मुआदे ते पहुची सघूं था। पाकिस्तान जी अहिड़ी दरख़्वास्त ते असां सिफारतकारी खे मौको ॾियण लाइ प्रोजेक्ट फ्रीडम खे रोकण ते मुतफ़िक थियासीं। सदर ट्रंप सिफारतकारी खे तरजीह ॾिए थो ऐं मसइलो ॻाल्हियुनि वसीले हल करणु चाहे थो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान ऐं स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ़ सां मुलाक़ात। तरफ़ी लाॻापन इलाक़ाई सूरतहाल ऐं गॾियल तावन खे हथी ॾियण ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल थी। ईरानी क़यादत पारां जंग जे ख़ात्मे लाइ पाकिस्तान जी कोशिशनि जी वाखाण। सदर मसूद पज़िशकियान जंग बंदी लाइ वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिफ मुनी जी कोशिशनि जी वाखाण कई। मसूद पज़िशकियान जो चवण हो त जंगी सूरतहाल बावजूद ईरान ऐं पाकिस्तान में लाॻापा वधीक मज़बूत थी रहिया आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि विच में इक़्तिसादी, वापारी, साइंसी, सकाफ़ती ऐं इलाक़ाई तावन खे वधीक मुस्तहकम करे सघिजे थो। घर वज़ीर मोहसिन

वी जो चवण हो त तेहरान ऐं इस्लामाबाद विच में लाॻापन खे वधीक मज़बूत करण जी ज़रूरत आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में तारीख़ी, सकाफ़ती ऐं आवाम सां लाॻाप आहिनि। पाकिस्तानी आवाम ईरानी क़ौम लाइ दिलि जी गहराइनि सां प्यार ऐं एतराम रखे थो। बाकर कालीबाब जो चवण हो त ताज़नि वाक़नि मां ज़ाहिर थिए थो त ख़िते में अमरीकी मौजूदगी सिक्योरिटी जे फुक़दान सबबि आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिक भेरो ॿीहर ख़बरदार कंदे चयो आहे त ईरान जल्द खां जल्द जंगबंदी करे वठे त उन जे हक़ में बहितर थींदो। जेकॾहिं जल्द अमन मुआदो तय न थियो त ईरान खे तमामु ॾुखे वक़्त खे मुंहुं ॾियणो पवंदो, जेको उन जे वेझो पहुची चुको आहे। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई आहे त अमरीका ऐं इसराइल जे ईंदड़ हफ़्ते ईरान ते हमले जी तयारी मुकमल करे वरिती। हमला ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर शुरू थी सघनि था। अमरीकी अख़बार मूजिबि विच ओभर जे ॿिन आला उहिदेदारनि चयो आहे त इसराइल ऐं अमरीका मुख़्तलिफ़ अस्करी ऑप्शन ते गौर करे रहिया आहिनि, जिन में ईरान जे फ़ौजी ऐं बुनियादी ढांचे ते वॾी बमबारी, नार फारस में वाक़े ईरान जे अहम तेल बरामदी मर्कज़, खार्ज आइलैंड ते कब्ज़े ऐं ईरानी सरज़मी

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफ़ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुँच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: माँ खाधो गरम करे थी वठा।
3: पुद थकल थकल पी लगे घणी, खैरियता?
2: तवा जो पुट सुमई नथो पूरी रात, मां त खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा।
4: मेरी थकन को भी तेरे
3: तू हाल वे मां छा तू हाल तू।

0: हे वट एडियु शयूं खांदी कर सेहत ठीक रांदी
1: तवा खाओ
0: नाना तू खा तू ना खांदी ते माके खाइंदम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पियारण वारी माओ जी बेहतरीन गिज़ा भाव ऐं बार इन्हीं जो हक आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
0: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: It's 10 AM. This time check is brought to you by
2: Michael Habib. रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
4: About

सिद्धार्थपुर में शाहपुर चौकर रोड तेज रफ्तार मजदा गाड़ी ब्रेक फेल थी वन सबब बंद पल फाटक जो दरवाजो तोड़े कराची का पंजाब वन पाक बिजनेस क्लास रेलगाड़ी से टकराई वही हादसे में मजदा जो ड्राइवर मौके से फौत थी मजदा के क्लीनर हलंदड़ गाड़ी में टप्पो डई हयाती बचाई हादसे में फौत थियल मजदा ड्राइवर ने क्लीनर की सुणप न थी मड़ ए जख्मी अस्पताल मुंतकिल हादसे का ट्रेन कुछ मुफासिले बीजी वही रेलवे जो अप एंड डाउन ट्रैक बंद थी पाया।

कोडी जी भरिसां पुरमज़म्मत ते कतल थियल नौजवान जो लाश रखी धरणो। कुंभ थाने जे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ वटि पुरदौरान हथियार बधल नौजवान गुलाम मुस्तफ़ा बुख्टी खे कतल करण बाद फरार थी विया।

अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ प्रोजेक्ट फ्रीडम खे रोकण जो सबबु पाकिस्तान जी दरख़्वास्त हुई। पाकिस्तान चयो त जेकॾहिं तव्हां प्रोजेक्ट फ्रीडम खे रोकियो त असां समझूं था त असां हिकु मुआहिदे जी पहुची सघूं था। पाकिस्तान जे अहिड़ी दरख़्वास्त ते असां सफारतकारीअ खे मौक़ुफ़ ॾियण लाइ प्रोजेक्ट फ्रीडम खे रोकण ते मुतफ़िक़ थियासीं। सदर ट्रम्प सफारतकारी खे तरजीह ॾिए थो ऐं मसइलो ॻाल्हाइण वसीले हल करणु चाहे थो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
2: Assalamualaikum. मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ. 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 पोलियो की मुहिम आने वाली है. इसमें मैं वालदान से दरखास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि वो पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे

वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खां भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
7: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GFM की आवाज।
6: GAFM Network, सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: इट्स 11 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
5: बैंक अल हबीब।
6: आप सुनेंगे न्यूज
7: गारन लाए हरो पर खबर नहीं पे करनो कहीं क्या है आम जो अमरीकी नशरियाती मार्को रूबियो चयो तो प्रोजेक्ट फ्रीडम पाक खातरी कराई था ऑपरेशन कें मुआदे तक पहुंची सके तो अमरीकी सदर पे हल सफारतकारी जरिए चा कुआरी जो अजालो करने लाए को कदम खयो पे तो इस्लामी जमहूरिया ईरान सतह अमलन जी रत आमुईदो ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फसल शेख मीडिया से गाल जनरल शिकार थी चो तो मायूस अमरीकी सदर के ईरान खिलाफ नई जारियत कई वही तो अमरीकी असासा उन तमाम खराब हालत के मुंह डी।

सिंधड़ी भरिसां पसंद पढ़ण त नारी जे वासन पारां प्लान में अॻवा कयल टे नारियूं बानगो वेठा हाजी अबू बकर जुड़नि जो वासन 16 सालनि जी रिहान आहे 18 साल आसिया ऐं 10 वरनि जी नाज़िया बाज़ियाब न थी वञे घरनि तां गिरफ़्तार करे अंजतल हंधि मुंतकिल वाक़े जो केस मरीज शाहबर सां मोटरवे ते किरियल मुसाफ़िर कोच कल्टी 10 ॼणा ज़ख़्मी गुडू इंटरचेंज भरिसां हादसे में औरतनि ॿारनि समेत 10 मुसाफ़िर ज़ख़्मी थी पिया पुलिस मूजिब मुसाफ़िर कोच सां हादसे जो झूठो अचण सबबि पेश आयो भरिसां ॻोठ रहीम चा घर मां फाहो लॻल लाश हथ 20 वरनि जी भागुनि ती ज़ाल करमण कूड़ा

0: ये थे FM न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: सामीन नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन पोलियो के बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: जडे मा पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तवयो।
5: अपना शहर अपना मटियारी और मटियारी की आवाज
6: GFM 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: This program is brought to you by
4: Jade maa panjo khyal rakhandi aahe ta sehat naslan tai halandi aahe. Hi pegam Kash Foundation ay Canadian Government je tarfa pesh kayo vayo.
5: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जडे माँ पांजो ख्याल रखन दिया है तो सेहत नस्लन ताई हलन दिया है. ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो.
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाहे कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में. पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है. दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है. पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार.
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 12 PM. This transact is brought to you by
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: आहे सियासी ऐं फ़ौजी क़ायद जे किरदार सां मुल्क जी साख बहितर थी आहे। ईरान, अमरीका ऐं नारा जा मुल्क पाकिस्तान ते एतमाद कंदा आहिनि। चटादार अमन हासिल करण सवलो नाहे हूंदो। ॾुखियुनि हालतुनि में सब्र, हिकमत ऐं मुस्तक़िल मिज़ाज जी साख ते वधण ज़रूरी आहे। इसराइली मीडिया जी दावा, अमरीकी में हथियार खणी इसराइल पहुचण लॻा। इसराइली मीडिया मौजूद जो मतलब ईरान ते ॿीहर हमला करण जी तयारी आहे। पाज़ीर ग़लती वॼाइण ते फ़ैसिलातो जवाब ॾियण जी धमकी। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फसल शिकारची चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ नई जारी जवाब फ़ैसिलातो ऐं तबाह कंदड़ हूंदो। सदर ट्रंप पाकिस्तान जे चवण ते प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकियो। सदर ट्रंप हिन वक़्त बि ईरान मसइले जो हल सिफारतकारी ज़रिए चाहे थो। अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्को

यूएई के खबरन घुर्जे त ईरान जी सबुर जी हद आहे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनाई जी मिलिट्री सेक्रेटरी मौसम रज़ाई चयो आहे त यूएई ऐं इसराइल विच में लागापन खां आगाह आहियूं। यूएई खे इसराइली साज़िशनि में न फासण घुर्जे। तेहरान अबू ज़ेबी सां दोस्ती जा दरवाज़ा बंदि न आहिनि कया।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: डॉक्टर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

पाकिस्तानी साज़िश ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। तहरान अमरीकी तजवीज़ुनि ते जवाब ॾेई चुको आहे। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमन हुरमत बाबति ईरान जा उमान ॿियनि सां राब्ता जारी आहिनि। यू एई समेत खिते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी न आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार

0: नमान सूरतहाल पैदा थियण जो ख़दशो आहे। अदालत जी जांच ऑफिस दरख़्वास्त ते जेल में ॿुधणी जो हुकुम जारी कयो। ॾखण वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े वाना जे रुस्तम बाज़ार में धमाको, टे ॼणा शहीद, चार ज़ख़्मी। डी पी ओ वाना जो चवण आहे त रिमोट कंट्रोल बम धमाके सबबि टे ॼणा शहीद, चार ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। धमाके में अहमद ज़ईब वज़ीर कबीले जे सरबराह जी गाॾी खे निशानो बणायो वियो, जेको हमले में शहीद थी वियो आहे। रादनवड़ सां जवाबदार नारी खे कारेल जो, घोट नारी में अकबर चांडियो कारेल सां वेठ 20 सालनि जे सूमल चांडियो खे क़तल कयो। इतलाह ते पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची नारी जो लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। नारी जो भाउ वाराबट सां पुराणे जे घरनि ते हमिलो, हिकु औरत मारिजी वई, ॿिए ज़ख़्मी मासर जे लाड़े वटां थिया पलान वई। पुलिस जो चवण आहे जांच जारी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायंद सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
5: जदें माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे तो सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
6: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
7: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
6: जीए एफएम नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा वेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायो

मौसम जब दिन सभी समाधान से मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल दुआओं के संबंध है, साधु के बारिश उदासवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात, नींद से जाकर जमीन से आसमान, जिंदगी से मौत और चांद सितारे तक, हम से खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे, तो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जहां प्रोग्राम सुन रहे हैं White Ace Anti Skin Beauty Show is sponsored White Ace Beauty Products Anti Skin Beauty Products के तावन से यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरे मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप लोगों के साथ साथ है। तो प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है जनाब White Ace Beauty Products के बारे में, Anti Skin Beauty Products के बारे में, तो अगर आप भी हंसी चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा की खूबसूरत आप कैसे रह सकते हैं। हाँ जी, खूबसूरतियाँ हासिल करना आसान होता है लेकिन खूबसूरती को मेंटेन करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल बात होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखें, अपनी खूबसूरती को बहाल रखें, किस तरह जो है ना रखना है, ये मैं आप लोगों को बताती रहूंगी बारे में एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में, तो किस तरह के प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करेंगे ये बातें बताएंगे। तो बिल्कुल जी, आप जितनी भी समाते हैं कमेंट कोशिश आमदीद कहा बिल्कुल जाइए, सो डियर लिसनर्स अंत के पास होंगे तो आप क्रियाँ थी वो खत्म हो चली है। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में की नन आपके दिलों में भी हमारा साथ रहने वाला है, ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि आप लोग रहोगे तो पूरे 2 घंटे आप ही हमारे साथ मौजूद रही बातों के साथ, बहुत ज्यादा वाले फन के साथ और बहुत ज्यादा वालों के राजों के साथ साथ। आइए जरा आप कौन हमारे साथ रहे, और इसी के साथ साथ अगर आप भी White Ace Beauty Products का इंतखाब करना चाहते हैं तो जरा आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाइए, वहाँ से मालूम लीजिए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो वो भी कैसे अवेलेबल कराएंगे ये भी मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। तो पूरे प्रोग्राम में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वाली बातें हैं आप लोगों के लिए, और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुने के लिए जरा रेडी हो जाइए। तो बिल्कुल जी, आपके होंठों पर 440 उल्के समाइल लाने का काम करती हुई आपकी सदरा, तो आपके होंठों पर 440 उल्के समाइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जनाब एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ। तो कलाम सुनते हैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में और उसके बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों से मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या है जो सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम White Ace एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है White Ace ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आपका हमारा साथ पूरे पूरे 3 बजे तक। सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर हमने कलाम सुना। और इसी के साथ साथ जनाब, हज का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो आप तमाम तो लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक। और इसी के साथ साथ आप प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र किया जाता है, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र किया जाता है, ताकि आप लोगों की खूबसूरती मेंटेन रहे, आप लोगों की खूबसूरती बढ़ती रहे। और आप लोगों को ये पता हो जनाब, मार्केट में आपने जाना है तो आपने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना है। तो अगर आप लड़के लड़कियां हैं, परेशान बैठे हैं कि भाई ईद भी करीब आ रही है और हमने जो है अपनी स्किन को लेकर कोई भी तैयारी नहीं करी है, स्किन हमारी खराब हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, टेंशन की तो बात है ही नहीं, क्योंकि यहां पर आप लोगों के लिए मार्केट में वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूम हासिल कीजिए, अगर नहीं मिल रहे वहां पर आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो आपको नंबर बताया जा रहा है प्रोग्राम के अंदर, जिसके ऊपर आप रब्ता करेंगे, कॉन्टेक्ट कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए जाकर परचेज कर सके। नकल करेंगे तो आपको साहब उनको बताइए कि आप प्रोग्राम सुनकर जो है ना अवेलेबल कराना चाहते हैं अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर वाइट एज के प्रोडक्ट्स, डी स्किन के प्रोडक्ट्स, ताकि वो जो है ना वो जान सके कि कहाँ कहाँ पर अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं। तो आप बस थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दिया करें और आप बता दिया करें कि आपके एरिया में मिल रहे हैं ये प्रोडक्ट या अभी तक नहीं, तो जल्दी से अवेलेबल कराते जाइए। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप किस तरह से हमें ज्वाइन करने वाले, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, और जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। पेज को फिर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ पेज को भी आप फॉलो कीजिए, और उसके ऊपर आपको जो हमारी पोस्ट मिलती है उसको भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए। तो शेयर करते रहिए बहुत ज्यादा वाला, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, और इसके अलावा इस्तेमाल करते जाइए वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो कि आप लोगों के लिए है जनाब, आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। अगर आप ये सोच रखते हैं ना कि भाई जान जी गर्मियों का जब भी सीजन आता है, तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो ये कहते हैं कि भाई हम प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं गर्मियों के सीजन में, हमारी स्किन जो है वो और ज्यादा मजीद खराब हो जाती है। तो आप लोगों के लिए इस गर्मियों के सीजन इस तरह के प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं जिनका आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे बल्कि आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी करेंगे, चाहे अगर आपके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, या फिर आपके चेहरे पर फेयरनेस का मसला है, या फिर आप कोई अच्छी सी नाइट क्रीम नहीं सर्च कर पा रहे, तो भाई आपके पास वाइट एश ब्यूटी क्रीम मौजूद है, वाइट एश का फेस वॉश मौजूद है जो कि विटामिन सी से तैयार होता है, उसके अलावा वाइट एश का ब्यूटी सोप भी मौजूद है, जो लोग सोप लगाते हैं वो सोप लगाएंगे, जो लोग फेस वॉश लगाते हैं वो फेस वॉश लगाएंगे। उसके अलावा अगर फेयरनेस का जिक्र आ जाता है, तो भाई आपके पास वाइट एश की लवली क्रीम होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर एक्नी बहुत ज्यादा आपके चेहरे पर मौजूद है, तो आपके लिए डॉक्टर पिम्पल आयुर्वेदिक का ये ट्यूब है, जो कि एंटी एक्नी फार्मूला है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे के एक्नी छू मंतर हो जाते हैं। तो वाइट एश के प्रोडक्ट से जो कि डॉक्टर पिम्पल नाम से ये एक्नी वाला ट्यूब आपको मिल जाता है, इसलिए आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है ना मजीद बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं।

0: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram, ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream. This program is brought to you by
2: Jade maa panjo khayal rakhandi aahe, ta sehat naslan tain halandi aahe. He pegam Kash Foundation ay Canadian Government jitarfaan pesh kayo vayo.
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है. मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में. पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है. दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है. पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार.
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता ने ब्यूटी क्रीम ब्राज अपन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
3: GFM 91.6।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: सुन।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरे मेहरापुर मातली और लाड़कना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो। ओके जनाब, सो व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरती आप लोगों को मिलती जाएगी। बिल्कुल जनाब, अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हैं तो आप जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती को न सिर्फ बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स बल्कि आप लोगों की खूबसूरती में जो है ना वो मजीद इजाफा भी लाएंगे और आप लोगों की खूबसूरती की हिफाजत भी करेंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो है ना वो आप लोगों को कम ही मार्केट में नजर आएंगे, जिससे आप लोगों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल भी रख रहे हैं। ओके जनाब, सो हम यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं कि जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, जितने पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जब व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स का जिक्र आता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, तो उन्हीं तरह से यहाँ पर आप लोगों को ये चीज बताई जाएगी कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास जो है व्हाइट एज ब्यूटी सोप मौजूद है। क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि भाई हम क्रीमें नहीं लगा पाते हैं, तो अगर आप क्रीमें नहीं लगा पाते हैं तो आपके लिए मजीद और बहुत सारी ऑप्शन है, जैसे कि भाई व्हाइट एज का सोप मौजूद है, व्हाइट एज का साबुन है जो कि एवोकाडो एलोवेरा से तैयार शुदा है, ये तो भाई आप लोगों की डेली बेसिस लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।

वाइट एश ब्यूटी, वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है ये आप लोगों की खूबसूरती को जो है ना वो हमेशा बरकरार रखने वाली क्रीम है, आपकी खूबसूरती को हमेशा जो है ना वो निखारने वाली क्रीम है, आपकी स्किन को फेयर बनाती है, फ्रेश बनाती है, आपके चेहरे को जो है ना हर साइड इफेक्ट से पाक रखती है, क्योंकि इसके अंदर भी एवोकाडो और एलोवेरा मौजूद है, दोनों चीजें आपके चेहरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो आप ट्राई करके देखिएगा रिजल्ट्स मिलेंगे, आप लोगों की डेली बेसिस लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोग भाई चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर ना कोई हमारे पास अच्छा वाला साबुन होना चाहिए, उसी के साथ साथ अगर आप साबुन नहीं यूज करते हैं या फेस वॉश यूज करने वाले इंसान हैं, तो आप व्हाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने वाला है। ये क्रीमी फेस वॉश, ये क्रीमी टेक्सचर के साथ साथ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा फील होता है और आप लोग महसूस करते हैं कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये आप लोगों की खूबसूरती को जो है ना वो हमेशा बरकरार रखने वाली क्रीम है। ओके, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें गर्मियों में लगाने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, तो गर्मियों में लगाने वाला प्रोडक्ट है जनाब व्हाइट एज की लवली क्रीम, क्योंकि रेडियंट अल्ट्रा विटामिन्स के साथ तैयार शुदा होने वाली क्रीम है। इसके अंदर 30 विटामिन्स के कैप्सूल एड किए गए हैं, जो कि विटामिन डी मौजूद है जनाब, विटामिन डी के साथ साथ जो है ना इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है, यानी कि कुल मिलाकर आप लोगों की खूबसूरती का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपकी खूबसूरती का ख्याल रखा जाए, तो थोड़ा सा आप भी अपना ख्याल रखें और आप भी इस्तेमाल करें जनाब व्हाइट एज के प्रोडक्ट के, आप लोग लगाएंगे दोपहर को लगाएंगे, फेस वॉश भी बिल्कुल वैसे लगाएंगे, अगर व्हाइट एज की लवली क्रीम लगाना चाहते हैं तो जनाब उसका इस्तेमाल आप दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, जब आपका दिल करे तब कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फेयरनेस क्रीम है। अगर आप मेकअप की जगह पर इसे यूज करना चाहते हैं, यानी कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपके लिए जो है ना व्हाइट एज की लवली क्रीम ये बहुत ही अच्छी साबित होगी लगाने के लिए, क्योंकि जब आप गर्मी में सोचते ना कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी स्किन के ऊपर अच्छा रहेगा, तो विटामिन से तैयारशुदा ये व्हाइट एज की लवली क्रीम आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। दिन में बस लगाइए, अपना फेस वॉश कीजिए, उसके बाद लगाइए, फिर देखें कि आपकी स्किन किस तरह ग्लोइंग बनती जाती है। आप करना चाहते हैं, यानी कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको कोई काम है, कोई आप कॉलेज गर्ल हैं, पढ़ने वाले हैं, या ये हमें दिखाता है कि आप लोगों को वाकई हमारे प्रोग्राम से मोहब्बत है, प्रोग्राम से मोहब्बत कीजिए और साथ साथ जो है ना व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट से भी मोहब्बत कीजिए, और इसके अलावा इस्तेमाल करते रहिए ताकि आपकी खूबसूरती में इजाफा और लोग आपसे भी मोहब्बत करें, ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर जो है गाना लगाते हैं ये वाला, गाना सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत गाना है, ये रिमिक्स वर्जन में गाना है, और साथ साथ मेरे ख्याल में कमेंट्स आप लोगों के काफी सारे ऊपर भी चले गए, लेकिन कोई बात नहीं।

आप बाहर जाने वाले इंसान हैं, आप कॉलेज गर्ल हैं, पढ़ने वाले हैं, होती हैं, ये आप लोगों का सपोर्ट होता है, ये हमें दिखाता है कि आप लोगों को वाकई हमारे प्रोग्राम से मोहब्बत है। प्रोग्राम से मोहब्बत कीजिए और साथ साथ जो है ना वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट से भी मोहब्बत कीजिए और इसके अलावा इस्तेमाल करते रहिए ताकि आपकी खूबसूरती में इजाफा और लोग आपसे भी मोहब्बत करें। ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर जो है गाना लगाते हैं, ये वाला गाना सुनेंगे, बहुत ही खूबसूरत गाना है, ये रिमेक्स वर्जन में गाना है। और साथ साथ मेरे ख्याल में कॉमेंट्स आप लोगों के काफी सारे ऊपर भी चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा गया। और कहते शो लाइव है, बिल्कुल जी लाइव है, आपको क्या लग रहा है। और उसके अलावा जी आप पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए ताकि बहुत ज्यादा वाली ऑडियंस आ जाए हमारी पोस्ट पर और लोगों को ये ना लगे कि भाई पोस्ट जो है वो लाइव नहीं है, क्योंकि जब ऐसा लगता है आप लोगों को थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी रश होती ना पोस्ट पर, तब आपको ये लगता है, मुझे लगता है, तो रश बढ़ाइए। और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो। अच्छा वफा, मीर मुनव्वर अली कहते हैं, मुझे लगता है आप नाराज हैं मुझसे, इसलिए मुझे आप शामिल नहीं करती हैं शो में। नहीं, आपने जब जब कमेंट किया तब तब आपका कमेंट मैंने शामिल कर दिया प्रोग्राम में, जैसे नाराजगी आखिर क्यों की जाएगी आप। और चाचा खाले चुनी जो कहते हैं कि जिंदगी उस वक्त पुरसकून हो जाती है जब इंसान हर दुख, हर तकलीफ और हर आजमाइश अल्लाह आजमाइश पर अल्लाह के लिए सब्र करता है। बिल्कुल जी, ये सही बात है।

जनाब से प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं और साथ साथ डायल करते जा रहे हैं 03-15-799-0595 ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर आपके गोट में आपके शहर में आपके सिटी में आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर आपके पाड़े में हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे तमाम प्रोडक्ट्स जो कि आप लोगों को बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को नाम आना चाहिए प्रोडक्ट का, तो नाम भी याद कीजिए कौन सा प्रोडक्ट आपको बताया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप लोगों की खूबसूरती के लिए है तो इस्तेमाल कीजिए। ऑल स्किन टाइप के लिए है, लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं। अच्छा अब्दुल रजाक जरदारी हमें सुन रहे हैं। अब्दुल रजाक जरदारी भाई आपका बहुत शुक्रिया वेलकम के साथ साथ। अनवर भाई क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं निंद्र।

12 वर्ष पुरानी तकरार तां औरत समेत बजणा कतल हथियारबंदन अदालत वेंदड़ गोठाणे शान चांडियो के कतल कयो पलान में मक़तूल जे वारसन जो इल्ज़ाम हेठियल धुर जे घरनि ते हमिलो करे ॾिनो हिकु औरत मारिजी वई ॿी ज़ख़्मी मास्तर जे लाड़े वटि हथियारबंदन फायरिंग करे शान चांडियो खे क़तल कयो मक़तूल धुर पलान में इल्ज़ाम हेठियल

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते
1: 91.6।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन वल्द हज़रत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह ले, हर से कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह से अमराज से हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: जने मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
5: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
6: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
5: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल खुदा गवाह बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम। FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 2:15 PM.
2: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niyajosho, a product by Biocon International Pakistan.

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहराब और मादली और जनाब लारकाना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के तावन से। सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट तो आप जान चुके हैं कि भाई आप लोगों की खूबसूरती के लिए कितने ज्यादा जरूरी है, तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर आप लोगों के साथ हम जरा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी, ताकि आप लोगों को प्रॉपर पता होना चाहिए कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को किस तरह रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आप लोगों की खूबसूरती के लिए है और ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है ना, ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयारशुदा होने वाला प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों को रिजल्ट देने वाला है सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल। अंदर मौजूद है जनाब वाइट और विटामिन बी जो है ना वो बहुत पावरफुल होते हैं लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, और साथ साथ सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाए नहीं बल्कि आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी रखेंगे। और जनाब सिर्फ 2 दिनों में वाज़े नतीजे के लिए व्हाइटनिंग क्रीम जो है ना ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नाइट क्रीम में तो जनाब इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने से पहले आप अपना फेस वॉश कीजिएगा। डी स्किन फेस वॉश से डी स्किन फेस वॉश जो है ये भी आप लोगों को इजीली कहीं इसे भी मिल जाएगी। तो डी स्किन फेस वॉश वो आप अप्लाई कीजिए अपना चेहरा अच्छे से वॉश

आते तो वो प्रॉपर आपके पेड़ों पर भी लगा सकते हैं। तो अगर आप जो है ना ये सोच रहे हैं कि कोई डॉक्टर से तजदीदशुदा वाली क्रीम है, ब्यूटी क्रीम है, तो आप उसे सिर्फ अपने चेहरे के एक्ने को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये बिल्कुल है कि आप जब अपने पूरे चेहरे पर लगाएंगे तो आपके चेहरे के जो एक्ने वो खत्म हो जाएंगे, या फिर आपके चेहरे पर जितने मसाले उनमें जो है ना वो कमी हो जाएगी। लेकिन ये बात भी है कि आप अगर ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे से किया करें। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स मौजूद है तो आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और साथ साथ डी स्किन का जो ये फेस वॉश है ना, ये हाइलुरोनिक एसिड है जनाब, सीरम भी इसके अंदर मौजूद है, ये बहुत ही शानदार क्वालिटी से तैयार शुदा है। ये आपकी खूबसूरती को न सिर्फ बढ़ाता है बल्कि आपके चेहरे की स्किन को जो है ना वो क्लीन करता है। इसके अंदर क्लींजर मौजूद है, आपके चेहरे की स्किन रूखी सूखी रहती है तो उसे भी मॉइस्चराइज करता है, आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा सा अच्छी खूबी है। तो आप ट्राई करके देखें ताकि आप लोगों को भी ये एहसास हो कि अब आपके पास अच्छे वाले प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहे। हाँ जी, आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जा चुके हैं, वहां से

ओके जी, तो यहाँ पर आप हमारे शमन मिराली के गाने की बहुत ही प्यारी सी फरमाइश हमारे पास मौजूद है, तो हम जरा शमन मिराली के गाने की फरमाइश जो है वो चला लेते हैं प्रोग्राम में। और यहाँ पर जिसने फरमाइश करी वो भी देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद है, और साथ साथ ये आप हमें कमेंट्स करते जा रहे हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं।

प्रोग्राम में आपका हमारा आने के बाद हम जरा हमारा साथ दीजिए और पूरी पूरी 3 बजे तक मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए।

0: टेंशन छोड़ो।
1: इट्स 2:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना

0: ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: सामीन नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन है। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
2: अवां जी स्किन डल एं बेरोनक स्किन के लियो हिकु डिश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफ़ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट कराची में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुँच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रेगिस्तान में थे। एक इंसदादे पोलियो वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: This program is brought to you by
0: जॾहिं माउ पंहिंजो त सिहत सलन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: चाहे या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

प्रोडक्ट्स इंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी, ताकि आप लोगों की खूबसूरती जो ना वो बढ़ती जाए, खूबसूरती ही खूबसूरती हो और आप लोग जो है वो हसीन ही हसीन बनते जाए। ओके जी, सो यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को खूबसूरती कैसे मिलती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की खूबसूरती में दो रातों के इस्तेमाल के बाद ही जो है ना वाजे फर्क नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब दो रातें आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को ऐसा फील होता है कि वाकई भाई मजेदार तो प्रोडक्ट्स हैं। इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन से तैयार शुदा है और साथ साथ इसके अंदर वाइटामिन ई बीड्स भी मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आप लोगों को डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है जो कि भाई सीरम के साथ साथ तैयार क्लियर रहे और फ्रेश रहे। तो बिल्कुल आप इस्तेमाल करके देखेंगे जी स्किन ब्यूटी क्रीम जो की ऑल स्किन टाइप के लिए लड़के लड़कियां सभी ट्राई करेंगे। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम के लास्ट लिंक में तो जो लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है उन तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं, काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमारे साथ फेसबुक पर भी मौजूद हैं। और साथ साथ फेसबुक पर देखा जाए तो हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे लोगों में आपके मैसेजेस हैं जी, तो हम जरा आपके मैसेजेस रीड रखेंगे। अनवर भाई हमारे साथ ही, अनवर भाई आपका बहुत शुक्रिया दिल से। और मीर वफा मीर मुनवर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, बस आप पता नहीं क्यों शिकायतें कर रहे हैं और देखूंगी अगर टेस्टी लगा लेंगे। और हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं, चलिए ठीक है। और उसके अलावा उदास लड़की हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, बहुत

भुग्यो हमारे साथ है, मौसम भुग्यो आपका भी बहुत शुक्रिया, आप कहते हैं कि सो गुड योर शो, थैंक यू। अच्छा किशोर भाई, अगर साम्हूं वारो माण्हू ईअं चवंदो त पोइ मां पंहिंजी तकलीफ़ ॿुधाए छॾींदमि। अच्छा सनावला बिरोही हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। और किशोर भाई लिखते हैं कि मार के छोड़ दिया लेकिन दफनाया नहीं, अजीब शख्स था, रिश्ता रखा लेकिन निभाया नहीं, वाह वाह वाह वाह। असुलिये सफा आदिल कहते हैं सिद्रा शमन की इस गाने की फरमाइश नहीं किया था, नहीं वो कश्यप ने किया था। और एस एन अरबाणी भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अच्छा आदिल आपका जो गाना है ना वो हम कल सुनेंगे, ठीक है।

अरे चाचा मूं पैनल वारा सब मैसेज पढ़ी छियान शायद उन टाइम तवाजो नेटवर्क वैसे काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि ये वाला गाना हम सुनेंगे वैसे तो हमने सुन सुन कर जो है ना वो करा पका दिया इस गाने ने हम लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में चला लेंगे ठीक है जी और ये गाना है जिसकी फरमाइश हमें एक प्यारे भाई ने कर दी थी काफी टाइम से कहते हैं कि भैया आप मेरा गाना नहीं लगाती है तो आज ये उनका गाना भी

ओके जी, तो बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर हमने सुना. एक और गाना हमारी लिस्ट में है, तो जरा हम ये वाला गाना भी सुन लेते हैं. ये जी बहुत ही प्यारा गाना है. वैसे इस गाने का टाइटल मजबूर है, ये तो हम निदा के नाम जो है ना इस गाने को करेंगे. और साथ साथ हमारे साथ लुबी भी मौजूद है. लुबी ने मैसेज किया है, वालेकुम असलाम है ठीक है, आप बताएं लुबी आप कैसी है. कहती है की

वैसे यार सच में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा. मुझे लग रहा है मैं सोई हुई हूँ.

अरे गाना हमेशा जो होते हैं ना आता है जिसकी कंट्रोवर्सी की जाती है, तो इस गाने स्टार्टिंग में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की गई, जब इस गाने को बड़ी अच्छा तो आज हाँ काफी सारे लोगों के कमेंट्स हैं या फिर मैसेजेस हैं वो रह चुके होंगे, तो मैं जरा माजरत कर और ये दर्द दिल कह रही

हाँ जी मेरी गल सुन ऐसे बे, लेकिन हम यहाँ पर सकने की सोच रहे हैं। ये वाला गाना होगा हमारे प्रोग्राम का लास्ट ब्रेक, और ये फौजिया सुमरो की आवाज में गाना होने वाला है। को तो अड़ो हुए डाडू भी आई पी गानों में बुधो तो मुख्य इलाही सुठो लगो आए थोड़ो सैड, लेकिन गानो भलो आए सुन गाने की बुधना से गाने से करोगे जो तुम्हारा इजाजत भी वठना से कुछ मैसेज कॉमेंट पढ़ी वठूँ था दिसा तो पैनल ते खोर मैसेज जमा थी चुका है एडम ताजो मोहब्बतों तुम्हारे दा सारा मैसेज करे सजाए गोठ मीर शेर खान टालपुर खान अल्लाह रनो टालपुर भाई हमारे साथ है। आपका शुक्रिया चाचा खालिद, आपका भी बहुत शुक्रिया, इतने सारे मैसेजेस कर दिए हैं। और ये है जी दोस्तों से गड बाजी असा बोतल पियूं था लाड़कानो शाही बाजार में इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है। इमरान भाई ताजो मोहब्बतों आए बोतल पियो बाबा प्रोग्राम भी बुधो।

ओके जी, सो वरीन सलाह मुझे मुलाकात जेका है तव्हां सां सुभाणे वारे प्रोग्राम में थियण वारी आहे 1 बजे खां 3 बजे ताईं तव्हांजो सॼो साथ रहंदो आहे। बाबा प्रोग्राम में पंहिंजो इलाही सारो ख़्यालु रखंदा ऐं किथे का ग़लती थी हुजे तव्हां माज़रत कयां, पंहिंजा मैसेजेस रहिजी विया आहिनि, ख़ासि करे हिनजा गाना रहिजी विया आहिनि, सभिनी खां माज़रत कयूं पिया। सो मोकिलाणी नाहे बाबू सन सलामत सां, सलामत अलाह हाफ़िज़, बाय, लव यू ऑल एंड

0: कुकिन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केतिरा भेरा मुल्क खां ॿाहिरि वही पुलिस तफ़सील हथ करे 20 डिसंबर 2018 ते बाकू वई हुई। पिंकी जो मुड़ सगुणो इंस्पेक्टर राणा अकरम बि ॿ भेरा बाकू वियो हो। पुलिस मूजिब राणा अकरम पहिरियों भेरो पिंकी सां साथी किरण खे पकड़ियो हो। मुबैना तौर ते 5 करोड़ ऐं 2 गाॾियूं। सालनि जी सोमल चांडियो खे क़तल करे छॾियो। इतलाउ ते पुलिस वाकिए वारे हंधि पहुची नारी जो लाश अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। नारी जो भाउ ऐं मामो गिरफ़्तार। वाराबार सां पुराणे तकरार तां औरत समेत ॿ ॼणा क़तल। हथियारबंदनि अदालत वेंदड़ ॻोठाणे शान चांडियो खे क़तल कयो। पलांद में मक़तूल जे वारसनि जो इल्ज़ाम हेठि आयल धुर जे घरनि ते हमिलो। हिकु औरत मारिजी वई, ॿी ज़ख़्मी। मास्तर जे लाड़े वटि हथियारबंदनि फायरिंग करे शान चांडियो खे क़तल कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है। 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश कॉन्वर्टेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओ। के ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान भीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: मदनी टिबी दवाखानो रजिस्टर्ड फेज मोहम्मद रोड गोश्त बाजार खरीबाबाद सखर खमीस आए जुमो मिलना जो हंद मदनी टिबी दवाखाना मसान रोड नज लाला शहजादा चौक रोहड़ी राब्तो 0300 36 26 176।
1: सचल की सरमस्त धरती
2: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: GAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: White Age Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ Aloe Vera Vitamin Dot Avocado की भरपूर खूबियाँ, जिसके minerals skin में fully absorb हो जाए, skin को fair और fresh बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White Age Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ White Age Beauty Cream, glowing skin का राज। A product of Biocon International Pakistan.
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: यार मछा क्या किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक का दवाई नहीं थी।
4: छो भला छा छा तुखे, साफ साफ बुधा मसलो छाए।
3: यार हिक मसलो हुजे त बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे, न भुख सही लगे थी, अई जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वनन था, अई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही नाया।
4: यार तुजा घणा न, बस हिक ही मसलो आ।
3: हिक इहो किए?
4: हाँ तुझो मैदो खराब आ, छा तो न बुधो आ, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न हुंदो त भुख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो, ऐं न ताकत मिलंदी।
3: त पो मां छा कयां?
4: सोलो हलाहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स, हे कुदरती जुज़न मां तैयार कयल कोर्स, तुझे जिस्म जो हिस्सो बणजी, तुझे मैदे के बिल्कुल ताज़ो ऐं मजबूत करे छॾींदो, भुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई, पेट फूकजण खत्म, सुस्ती खत्म, जिस्म में ताकत ईंदई।
3: वाह यार वाह जी, गाल बुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
4: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी, ऐं राब्ते जे लाइ नंबर भी अथई 0305-58-00-616। शिफाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
5: खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
6: होमियो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
5: DHMS सिंध,
6: RHMP इस्लामाबाद,
5: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
6: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
5: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
6: कमर दर्द,
5: अर्कुन निसा,
6: जोड़ों का दर्द,
5: हेपेटाइटिस,
6: वजन की कमी या ज्यादती,
5: बे औलादी,
6: गंजपन का मुकम्मल इलाज
5: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
6: टाइम
5: हफ्ते से जुमेरात
6: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक,
5: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
6: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर,
5: राब्ते के लिए
6: 0326-22-00-440।
7: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
8: वादिए मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
7: GAFM 88 नेटवर्क,
8: सिंध की आवाज।

पोस्ट नजर से गुजरी, सोचा आप लोगों से भी शेयर करते चले। किसी भी फल का दरख्त एक ही किस्म की फसल देता है, लेकिन एक किसान ने दरख्त से 14 इकसाम के आम यानी मैंगो का फल काश्त करके ऑल वर्ल्ड को जो है वो हैरान कर दिया। यू नो वेरी वेल के फल का दरख्त हो या सब्जी का पेड़, तो एक ही किस्म का फल या एक ही किस्म की फसल देता है, मगर एक किसान ने नाकाबले यकीन तजुर्बा करते हुए एक दरख्त से 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज काश्त करके दुनिया को हैरान कर दिया। और ये हैरत अंगेज कारनामा भारतीय जिला गुजरात के किसान ओका भाई भट्टी ने अंजाम दिया है, जिन्होंने गांव में एक ही आम के दरख्त पर 14 मुख्तलिफ इकसामों के आमों की फसल काश्त की। ओका भाई भट्टी ने ग्राफ्टिंग टेक्निक साइंसी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए एक ही दरख्त पर मुख्तलिफ इकसाम के आम उगाए हैं, और आमों के मौसम में ये दरख्त अलग अलग रंग शक्ल और जायके वाले आमों से भर जाता है, जिसे देखने के लिए न सिर्फ आसपास के देहात बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग पहुंच रहे हैं। ओका भाई भट्टी के मुताबिक इस दरख्त पर केसर, अमरपाली, लंगड़ा, बादामी, गुलाबी, रसबरी, जमादार, काला जमादार, हाप्स और तोता परी समेत कई इकसाम के आम उगाए गए हैं। हर किस्म के आम का जायका, खुशबू, रंगत दूसरे आम से मुख्तलिफ है। हो गए ना आप भी हैरानी सुनने के बाद। मकामी अफराद के मुताबिक इनमें से बाज आमों की इकसाम जो है वो बेहद नायाब है, जो नवाबी दौर में काफी मशहूर हुआ करती थी। सनों के तजर्बे को देखने के लिए जरात और बागबानी से वाबस्ता अफराद जो है वो बड़ी तादाद में गांव का रुख कर रहे हैं, और रब कायनात जो कि तखलीक कार हैं उनसे सब कुछ

शादी की रस्म के दौरान रोते हुए दुल्हन जो है ये सवाल कर रही है क्या उसे अपने मायके जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी। इस जज्बाती मंजर ने जो है शादी में मौजूद तमाम लोगों की आंखें नम कर दी। इस रस्म के बारे में तफसीली नोट शेयर किया गया है जिसमें रिवायती तौर पर खवातीन शादी के बाद शौहर के घर मुंतकिल हो जाती है और उनसे तवक्को ये की जाती है कि वो मायके जाने की इजाजत भी अपने शौहर से लें। खातून ने कहा कि लोग अक्सर कहते हैं शादी के बाद औरत का घर इसके शौहर का घर होता है, लेकिन मैं इससे मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करती। वो घर जहां मैं पैदा हुई, जहां पली बड़ी, जहां मेरी इब्तदाई यादें, मेरी शनाख्त, मेरा सुकून वाबस्ता है, वो घर भी मेरा है, हमेशा मेरा ही रहेगा। और उन्होंने कहा कि वो जिंदगी जो मैं अब शुरू करने जा रही हूं और रिश्ते जिनमें मैं परवान चढ़ा रही हूं वो भी मेरा घर है। एक घर दूसरे घर की अहमियत खत्म नहीं करता। एक घर जहां बचपन का घर ये मेरी जात का हिस्सा है, मुझे वहां जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, वो मेरा घर है, जब चाहूं वहां जा सकती हूं। और उनका कहना है कि शादी की रस्मात का मुझे एक एक लम्हा याद है। जब फेरों के दौरान पंडित ने कहा था कि शादी के बाद मायके जाने के लिए ससुराल वालों से इजाजत लेना पड़ सकती है, तो मैंने उसी वक्त पूछा तो कि आप मुझे अपने ही घर जाने के लिए इजाजत मांगनी पड़ेगी। इस दौरान मेरे शौहर ने धीरे से मेरे कान में कहा कि वो तुम्हारा घर है, तुम जब भी चाहो वहां जा सकती हो। तो जनाब ये तो कुछ जज्बाती लम्हात होते हैं, ट्रेडिशंस और रसूम और रिवायात जो होती हैं हर खित्ते की, वहां के रहने वाले लोगों की, वहां के हवाले से ही होती है। इस हवाले से हमारी राय जो है वो महफूज है। फिलहाल यहां पर हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद आपको अगेन ज्वाइन करेंगे, देन बातों का सिलसिला ऐसे ही कंटिन्यू।

0: 031-366-1568 आपकी कॉल्स को शामली प्रोग्राम करेंगे। देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, वेलकम कहेंगे आपको। और शदीद गुस्सा जब आपको आता है क्या करती हैं आप?
1: मुझे वैसे गुस्सा कम आता है, मतलब सबर करती हूँ गुस्से में भी, लेकिन जब आता है तो मैं अपनी किताबों वाला भी गुस्सा करना, कोई अच्छी सी किताब पढ़ना शुरू कर देती हूँ।
0: अच्छा जी,
1: हमेशा से मैं ही करती हूँ।
0: अच्छा, लड़ाई वगैरह नहीं करती, किसी को जो है बुरा भला नहीं कहती?
1: पहले होती जाती थी, लेकिन अब तो आपकी बात पर इतना मतलब तब्दीलियाँ आ गई मेरी जिंदगी में, और अच्छा ही अच्छा होता है। अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए।
0: चले गुड है, ये तो अच्छी बात।
1: अल्लाह ताला जो भी करते हैं अच्छा करते हैं मेरे लिए, सब आपकी बदौलत हुआ है।
0: इसमें कोई शक नहीं है, वक्ती तौर पे हम जज्बाती हो रहे होते हैं ना, तो हमारी आंखें नाक कान सब ही बंद हुआ होता है, तो हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं।
1: तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, जब दर्द उदर करने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छी बात है, खामोशी बेहतर होती है। वक्त का जो आंसर होता है ना, वो बहुत बेहतरीन होता है। जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें
1: आपका शुक्रिया, आपकी बातों से सीखा है बहुत।
0: चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यास्मीन, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके जी यार, जनाब ये हमी इरम जान जो है 3 बजे सो गई है, तो अच्छी बात है, उन्हें आराम करने दे। आपने क्या करना, उनकी नींद खराब करनी है। अजय जी आप हमें सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया। अरीबा भलीकार चौथा तवा के, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: वेलकम कहेंगे महक को। महक शदीद गुस्से में क्या करती हैं आप?
2: बाजी मुझे जो अल्लाह से रखी अल्लाह सब्र करनी है, जो जो पानी थदो गिलास पी छदी गुस्सो खत्म थी
0: वियो। अच्छा, मतलब चीजें चीजें नहीं तोड़ती, सामान उठा के नहीं फेंकती?
2: ना ना ना,
0: एरी काब गाल कोनी। मेरे लिस्नर कितने शरीफ हैं, कितने सीधे साधे लिस्नर हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहेंगी सब सुनने वालों से? सबनी पारा वालेकुम असलाम मैक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, ये मैं चुटकी काट लूँ अपने बाजू पे, सारे चुप हो जाते हैं, सारे सब्र करते हैं, तो माशरे में नेगेटिविटी कहाँ से आती है? अरीबा कहती हैं ओके, पायजाली कोशिश करते हैं आपको सुनवाए। गुलाम खास के लिए गोट खां, कुर्बान खास के लिए भलीकार अदा तमाके, मोट मोहम्मद अय्यब थेबो से हबीबुल्ला थेबो, आपका शो वेरी नाइस, सलाम आपको। वालेकुम अस्सलाम अदा, थैंक यू सेम टू यू। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: वेलकम कहेंगे जनाब, कौन बात कर रहा है? अलहमदुल्ला आई एम फाइन अदा, तुम बुधायो तुम की आयो? सब सबको कोई पैगाम दे दें आप इस वक्त, जो आपको सुन रहे हैं बहुत से लोग। अदा सबको कोई
3: मैसेज बदली रेडियो सां जेके लिसनर आहिनि उहे तव्हां हुन खां भली मोहबत था कनि, तव्हां सां ॻाल्हाइनि ऐं जेको आहे वजे करे ॿियो माण्हू सां ॿिए सां मोहबत था हुन कनि।
0: चले ठीक है, ॾाढा महिरबानी तव्हांजी तव्हां सां कयो। और जनाब आप हमें बता रहे, जब आपको शदीद वाला गुस्सा आ जाता है तो आप क्या करते हैं आप? नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वाले जनाब वेलकम कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं?
3: मुझे कॉल लगी आपको, एक हफ्ते से कॉल लगा रही मैं आपको।
0: मैं एक हफ्ते से छुट्टी पे थी, छुट्टी पे।

0: अच्छा, मैं एक हफ्ते से छुट्टी पर थी, प्रोग्राम हो ही नहीं रहा था, एक हफ्ते से आज ही किया है।
1: गुस्सा आता है
0: शरीर वाला। फोड़ से वो मतलब कोई फायदा होता है?

अपनी जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। अब नहीं सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-1 बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो, ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील महासे और बेजान पन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सांवली रंगत अब नहीं सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 00 ब्यूटी क्रीम। खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।

लावा जी बेस्ट फ्रेंड जंक्शन जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वक्त की, तो 4:10 जो कि पाकिस्तान का प्यारी वक्त है, और इसके अलावा वो तमाम तो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस

जहाँ भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी बिटल ऑफ द नेवर। अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बाबा जी खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलूब। और इसके अलावा वो तमाम तो लोग जिन लोगों की आज सालगिरह है उनको कहेंगे मैनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बेटर कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं, कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, तो उनको जाएंगे मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेष कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें। आमीन सुमा आमीन। इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन दुनिया शहरों शहरों शराबों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और बाजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन मरहबन अहलन वसहलन मरहबा बखैर आवले जी आया नू सबिस्मिल्लाह बोंजोर शानिया एंड वेलकम टू बेस्ट लुक जंक्शन पावर्ड बाय

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सूट का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रोबीज फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अदी बख्तावरे तुंहिंजो मुड़ुसु हर वक़्त कम सां लॻल हूंदो आहे, पोइ बि तव्हांजा हाल कोन था मटिजनि।
3: हा अदी शकीला।

0: मजे की लहर GF2 कमर्शियल ब्रेक।
1: बाहर से भेजे गए रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल
4: से। रोजानो सुबह 7:30 हमेंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

नहीं आता ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई है। जब भी गुस्सा आए ना आपने दरगुजर करना है, गुस्सा हराम है, ये तो आपने सुना होगा। हर इंसान के अंदर गुस्से का होना एक फितरी अमल है। हाँ, गुस्से में आकर नेगेटिव बिहेव करना ये किसी भी तरह हमें और आपको जेब नहीं देता है। अच्छा, फातिमा कहती है गुल ना सुने दिल हमारी, हम भी कौन से इतने अच्छे हैं कि जो दिल की सुनते हैं। अच्छा फातिमा, ये तो आतिफ का सॉन्ग है भाई, मेरे दिल की आवाज नहीं है ये। गुल, चीजें तोड़कर अपना गुस्सा निकालकर अम्मा का गुस्सा देखना पड़ता है गुल ज्यादातर।

0: is 5 PM. This time check is brought to you by.
1: जिन्हें माँ पांचो ख्याल रखन दिया है, तो सेहत नस्लन ताई हलन दिया है।
2: अमेरिका ईरान में जंग बीहर शुरू थियण जा खदशा वधी विया। अमेरिका जो बारूद ए हथियारन सा भरियल जहाज इसराइल मोकलण जो सिलसिलो तेज करे छो। इसराइली मीडिया चयो आहे त अमेरिका ईरान ते हमलन जी तैयारी करे रहियो आहे। हथियारन सा भरियल कार्गो जहाज इसराइल पहुची रहिया आहिनि। पासदारन इनकलाब जे अमेरिका खे बीहर गलती वरजण ते फैसला तो जवाब ॾियण जी धमकी। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फज़ल शिकारजी चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ नई जारी जो जवाब फैसलाइतो ऐं तबाह कंदड़ हूंदो। सदर ट्रंप पाकिस्तान के चवण से प्रोजेक्ट फ्रीडम रोको। सदर ट्रंप इन वक्त भी ईरान मसले जो हल सिफारतकारी जरिए चाहे तो। अमरीकी पढ़ई वजीर मार्को रूबियो चयो आहे त पाकिस्तान चयो त प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकण सा मुआदे जा इम्कान मौजूद आहिन। तेहरान में फैसला केर करे रहियो आहे, मुंजारा मौजूद आहिन। पाकिस्तानी सालिसी ज़रिए अमरीका सा गालू जारी आहिनि। तेहरान अमरीकी तजवीज़न ते जवाब ॾेई चुको आहे। यूएई समेत खिते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी नाहे। ईरानी पढ़ी वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान यूरेनियम जे रचाउ बाबति पंहिंजे हक़ तां हथ न खणंदो। नई मामले ते कंहिं सां ॻाल्हियूं कंदो। ईरान जा जंग जे ख़ात्मे लाइ मुतालबा वाज़े आहिनि। यूएई खे कुझु महीननि जे वाकियनि खां सबक़ सिखणु घुर्जे। आफ़ना उर्मुस बाबति ईरान जा ओमान ऐं ॿियनि सां राब्ता जारी आहिनि।

0: सूमल चांडियो खे कतल करे छॾियो। इतलाउ ते पुलिस वाके वारे वटि पहुची नारीअ जो लाश अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। नारी जो भाउ ऐं मामो गिरफ़्तार।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
2: वतन की मोहब्बत की सरमस्त आवाज से।
3: तो डालो धमाल और बोलो
2: जीए एफएम 88
3: सिंध की आवाज।
4: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों की शोबाए सेहत से वाबस्ता हूं। मैं वालदैन से दरखास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
5: मोहम्मद उमर बुघी Institute of Nursing and Allied Technician, OT Technician, Medical Imaging Technician, Critical Care, Anesthesia Technology, Pediatric, Critical Care.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के चवण से प्रोजेक्ट फ्रीडम रोको है। सदर ट्रंप इन वक्त भी ईरान मसले जो हल सफारतकारी जरिए चाहे तो। अमरीकी परदेही वजीर मार्को रूबियो चाहे तो पाकिस्तान चयो हो तो प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकण से मुआहदे जहा इम्कान मौजूद आन। तेहरान में फैसला केर कर रो है, मुंझारा मौजूद आन।

पाकिस्तानी साजिशी ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। तेहरान अमरीकी डिवीज़न ते जवाब ॾेई चुको आहे। यूएई समेत ख़ते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी नाहे। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल वकई चयो आहे त ईरान यूरेनियम जे रचाउ बाबति पंहिंजे हक़ तां हथ न खणंदो, नए मामले ते कंहिं सां ॻाल्हियूं कंदो। ईरान जा जंग जे ख़ात्मे लाइ मुतालबा वाज़े आहिनि। यूएई खे कुझु महीननि जे वाक़यनि खां सबक़ सिखणु घुर्जे। अब्दुल हुर्मुज़ बाबति ईरान जा ओमान ऐं ॿियनि सां राब्ता जारी आहिनि।

पाकिस्तान में मुकर्रर सऊदी सफ़ीर नौफ बिन सईद जे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सां मुलाक़ात बि तरफ़नि लाॻापनि समेत ख़िते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। मौजूदा सूरत हाल में थींदड़ अगबराई ते बि गौर कयो वियो। सऊदी सफ़ीर पारां ख़िते में अमन अमान जी क़याम लाइ पाकिस्तानी कोशिशुनि जी वाखाणी।

0: सिंध असेंबली में घरेलू मुलाजमन के तहफ़ वो बिल यकरार से मंजूर। बिल पार्लियामानी मामलों के वजीर पेश कर शजीलना मेमण सवाल का जवाब डींदे सिंध सरकार जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 500 का बसू मुख्तलिफ रूट से हली रही हैं। आपा शिव जिजाम खान शोरे बरसात सबब ईंदड़ वोट के मुंह डण पानी की कुदरती वक्रता कब्जा हटाए रहा हूं। घरू वजीर जालसन अंजा हैदराबाद और कराची में गुटको ठही रो है कार्रवाई भी जारी है।
1: को भी सूबो खुराक की रसद में रंडक बणजी न तो सके। पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के कणक की फरहमी में रंडक विझी रही है। वफाक भी खामोश बणल है। खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सोहेल आफरीदी गवर्नर फैसल करीम कुंडी से गडल प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्दे खैबर पख्तूनख्वा जो आवाम सभी का महांगो अटो खरीद कर

सद साथी किरण खे पकड़ो हो। मुबैना तौर 5 करोड़ गाडियो वी बिन्हीं के छे दिनो हो। कुकेन क्वीन अनमोल उर्फ प्रिंकी जेल में कायम अदालत में पेश। पुलिस रिमांड की सदा अदालत 4 दिन जो रिमांड मंजूर करे वरतो।

0: रादण वे जो जवाबदार सौट नारीअ खे कारा इल्ज़ाम हेठि गोरियूं हणी क़तल करे छॾियो। ॻोठ अकबर चांडियो कारा इल्ज़ाम हेठि 20 वरनि जे सोमल चांडियो खे क़तल कयो। इतलाउ ते पुलिस वाके वारे हंधि पहुची नारी जो लाश इस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। नारी जो भाउ ऐं मामो गिरफ़्तार।
1: वाराए भरिसां पुराणी तकरारनि तां औरत समेत वञणा क़तल। हथियारबंदनि अदालत वेंदड़ गोठाणे शाहुल चांडियो खे क़तल कयो। प्लान में मक़तूल जे वारिसनि जो इल्ज़ाम हेठि आयल तुर जे घरनि ते हमिलो। हिकु औरत मारिजी वई, ॿी ज़ख़्मी। मास्तर जी लाड़ी वटि हथियारबंदनि फायरिंग करे शाहुल चांडियो खे क़तल कयो। मक़तूल जे धुर प्लान में इल्ज़ाम हेठि आयल तुर जी घोट गाज़ी ख़ान मरकट ते हमिलो कयो। औरत मारिजी वई। पुलिस जो चवण आहे त धुरियुनि में पुराणी तकरार तां वाकियो पेश आयो आहे। वधीक जांच जारी आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: किरु शौक हो न तोखे मुझे रो पाए तैयार थियण जो।
4: तू आज भी हसी
3: थोरो पाए तो देखार।
5: ना मां, मां थकी पई आहियां।
3: न पुट, ही थक ना है, रत जी कमी आहे। दिस त केडो न फिको थी वियो आहे तुंहिंजो चेहरो।
5: छा कयां मां?
3: 6 महीना थी विया आहिनि पुट, तूं उमीद सां आहीं। ऐं हाणे वञी तो शुरू कई आहे फौलाद जी गोरी। कचियूं भाॼियूं खाईंदी कर पुट, तोखे ख़बर आहे असां त मेवनि जूं खलूं बि खाई वेंदा हुआसीं। उन्हनि सां ई त खून ठहंदो आहे। इन सां न तोखे कुझु थींदो ऐं न ई ॿार खे। पुट, हाणे तूं माउ थियण वारी आहीं। पंहिंजो ख़्यालु रखणु ॿियनि खां बि वधीक ज़रूरी।
6: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
7: मेरा नाम डॉक्टर आफ़ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमेरिका ईरान में जंग बीहर शुरू थियण जा खदशा वधी विया। अमेरिका जो बारूद ए हथियारन सा भरियल जहाज इसराइल मोकलण जो सिलसिलो तेज करे छडियो। इसराइली मीडिया चयो आहे त अमेरिका ईरान ते हमलन जी तयारी करे रहियो आहे। हथियारन सा भरियल कार्गो जहाज इसराइल पहुची रहिया आहिनि। पासदारन इनकलाब जे अमेरिका खे बीहर गलती वरजाइण ते फैसला तो जवाब ॾियण जी धमकी। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फज़ल शिकारची चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ नई जारियत जो जवाब फैसला तो तबाह कंदड़ हूंदो।

सदर ट्रंप पाकिस्तान के चवण से प्रोजेक्ट फ्रीडम रोको। सदर ट्रंप इन वक्त भी ईरान मसले जो हल सिफारकारी जरिए चाहे तो। अमरीकी परडेही वजीर मार्को रूबियो है तो पाकिस्तान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकण से मुआदे जहा इम्कान मौजूद। ईरान में फैसला केर करे रो है मुंजारा मौजूद आया।

पाकिस्तानी सालिसी ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। तेहरान अमरीकी तजवीज़नि ते जवाब ॾेई चुको आहे। यूएई समेत ख़िते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी नाहे। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान यूरेनियम जे बचाव बाबति पंहिंजे हक़ तां हथ न खणंदो, नई मामले ते कंहिं सां ॻाल्हियूं कंदो। ईरान जा जंग जे ख़ात्मे लाइ मुतालबा वाज़ह आहिनि। यूएई खे कुझु महीननि जे वाक्यनि खां सबक़ सिखण घुर्जे। आबिरा हरमुस बाबति ईरान जा ओमान ऐं ॿियनि सां राब्ता जारी आहिनि। ख़िते में जटादार अमन ऐं इस्तेहकाम जो वाहिद हल सिफ़ातकारी ॻाल्हियूं आहिनि। दुरियो सफ़र जो मुज़ाहिरो करण सां गॾु आलमी कानूननि तहत पंहिंजूं ज़िमेवारियूं पूरियूं कनि। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ यूएई में एटमी बिजली घर ते ड्रोन हमले जी मुज़म्मत कंदे चयो आहे त मुश्किल वक़्त में यूएई हुकूमत ऐं अवाम सां गॾु आहियूं। पाकिस्तान में मुक़रर सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद जी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात। बितरफ़ा लाॻापन समेत ख़िते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं। मौजूदा सूरतयाल में थींदड़ अॻभराई ते बि ग़ौर कयो वियो। सऊदी सफ़ीर पारां ख़िते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तानी कोशिशुनि जी वाखाणी।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैन साथ ज़िंदगी भर का।
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ स्मेल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ अंडर
2: सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर था भी दाधा मियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दादा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान ट्रैकड़ी ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। तहरान अमरीकी तजवीज़नि ते जवाब ॾेई चुको आहे। यूएई समेत ख़िते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी नाहे। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान यूरेनियम जे बचाउ बाबति पंहिंजे हक़नि तां हथ न खणंदो, न ई मामले कंहिं सां ॻाल्हियूं कंदो। ईरान जा जंग जे ख़ात्मे लाइ मुतालबा वज़े आहिनि। यूएई खे कुझु महीननि जे वाक़नि खां सबक सिखणु घुर्जे। आबनाए हुर्मुज़ बाबति ईरान जा ओमान ऐं ॿियनि सां राबता जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नई का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी दादा नियर नई का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ पूजा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत-ए-मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमेरिका ऐं ईरान में जंग ॿीहर शुरू थियण जा ख़दशा वधी विया। जी तयारी करे रहियो आहे। हथियारनि सां भरियल कार्गो जहाज इसराइल पहुची रहिया आहिनि। पासदारान इनकलाब जे अमरीका खे ॿीहर गणती वरजाइण ते फैसलाइतो जवाब ॾियण जी धमकी। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फज़ल शकारजी चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ नई जारियत जो जवाब फैसलाइतो ऐं तबाह कंदड़ हूंदो।
2: The reason why Project Freedom stopped was at the request of Pakistan. And they said, the Pakistanis said, if you guys stop Project Freedom, we think we can get to a deal. And so in the interest of diplomacy, the president would prefer to have a diplomatic solution to this problem with Iran. We went ahead and agreed to stop it. We agreed to stop it. We had destroyers inside the Persian Gulf. We said, okay, we're going to stop. We're moving our destroyers out. They get fired upon by the Iranians. And that's the activity you saw last week.
3: सदर ट्रंप पाकिस्तान जे चवण ते प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकियो। सदर ट्रंप हिन वक़्त बि ईरान मसले जो हल सिफारती ज़रिए चाहे थो। अमरीकी परडेही वज़ीर मार्को रोबियो चयो आहे त पाकिस्तान चयो हो त प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकण सां वाइदे जा इम्कान मौजूद आहिनि। तेहरान में फैसला केर करे रहियो आहे, मुजहरा मौजूद आहिनि।
1: पाकिस्तानी ट्रैकड़ी ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। तेहरान अमरीकी तजवीज़ुनि ते जवाब ॾेई चुको आहे। यूएई समेत ख़िते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी नाहे। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान यूरेनियम जे रचाउ बाबति पंहिंजे हक़ तां हथ न खणंदो, नई मामले ते कंहिं सां ॻाल्हियूं कंदो। ईरान जा जंग जे ख़ात्मे लाइ मुतालबा वाज़े आहिनि। यूएई खे कुझु महीननि जे वाक़िअनि खां सबक सिखण घुर्जे। आबनाए हुरमत बाबति ईरान जा ओमान ऐं ॿियनि सां राब्ता जारी आहिनि।
3: खिते में जटादार अमन ऐं इस्तेहकाम जो वाइट हल सिफारतकारी ॻाल्हियूं आहिनि। धुरियूं सबर जो मुज़ाहिरो करण सां गॾु आलमी कानून तहत पंहिंजूं ज़िमेवारियूं पूरियूं कनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ यूएई में एटमी बिजली घर ते ड्रोन हमले जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त मुश्किल वक़्त में यूएई हुकूमत ऐं अवाम सां गॾु आहियूं।